0: इतनी हाजरी प्रवान करनी जी भुला चुका दी खिमा बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्नवादी हाँ कैलगरी यूथ दे समूह नौजवान सिंघां सिंघणियां दे जो हर मंगलवार अते शुक्रवार आप संगतां दे नाल रल मिल के वाहिगुरु गुरमंत्र सिमरन जाप राही हाजरियां भरदे हन। समूह सिंघां दा तह दिल तो धन्नवाद है। सतगुरु जी दी अपार कृपा दे पात्र भाई तरन सिंह जी अते भाई परविंदर सिंह जी इंग्लैंड निवासी जो यूरोप विच कैनेडा अमेरिका आस्ट्रेलिया विच विचर विचर के अमृत संचार दीयां महान सेवावां ग्रीवन वाज कलंगियां वाले पातशाह जी की कृपा का सदका निभाउंदे हन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की समूह सिंघां ते बड़ी महान कृपा है। गुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जी की सिखी के प्रचार प्रसार वास्ते अपना जीवन समर्पित किया है। धनता दे योग हन वह परिवार जिन्हां ने पूर्ण तौर पर पंथ के लेखे इन्हां सत्कारयोग गुरमुख प्यारियां नूं लाया अपने लिए काम कार हर कोई कर सकता माया कमा सकता जीवन विच स्वार्थी पदार्थां दी खिच वास्ते हर रोज़ असी सारे ही यतन करते हैं पर परमार्थी जीवन नूं बसर करन वास्ते अपना जीवन सब कुछ त्याग के लेखे लाउणा यह विरलियां गुरसिखां दे हिस्से आउंदा है। सो गुरद्वारा दशमेश कल्चर सेंटर के समूह प्रबंधकों वल्लों कैलगरी निवासी समूह संगतां वल्लों भाई साहिब भाई तरन सिंह जी अते भाई साहिब भाई परविंदर सिंह जी तिन्हां नूं कैलगरी आउण ते हार्दिक जियायां नूं आखदा हाँ धन्नवाद करदा हाँ। बेनती करां सत्कारयोग भाई लखविंदर सिंह जी भाई जगदीप सिंह जी ज्ञानी गुरमेल सिंह जी टोरंटो वालियां नूं दोनों ही गुरमुख प्यारियां दा सन्मान करनगे उन्हां नूं लै के आए ने नाल कैलगरी अमृत संचार जथे दे जथेदार भाई साहिब भाई इकबाल सिंह जी उन्हां दा वी तह दिल तो धन्नवाद है जिन्हां ने ऐसे गुरमुख प्यारियां दे दर्शन सानू करवाए ने। बेनती करां भाई तरन सिंह जी अते भाई परविंदर सिंह जी नूं गुरु घर की बख्शिश स्वरूप आओ प्राप्त करन जी।

अति सत्कार योग साध संगत जी सर्वत्र ही संगता ने बहुत ही प्यार विच सतगुरां दे दरबार दियां हाजरियां भरियां ने। वाहिगुरु गुरमंत्र है जप होमै खोई। फिर अर्ज करां, भाई साहब जी कहिंदे वाहिगुरु गुरमंत्र है। भी सतगुरु जी का गुरमंत्र वाहिगुरु शब्द जो पंजा प्यारियां ने सबां दी पावन हजूरी अंदर बख्शिया है, इस वाहिगुरु सिमरन अभ्यास बहुत ही प्यार विच जपिया है। और नाम जपण दा लाभ की है? जप होमै खोई। साहब जी कहिंदे नाम जपण दे नाल होमे दा जिहड़ा वड्डा रोग लगा होया है, जिहनूं महाराज कहिंदे होमै दीर्घ रोग है, बड़ा तकड़ा रोग है। एक कवि होया कालीदास जी, उन्हें एक बचन बड़ा प्यारा लिखिया। वो कहिंदा मैनू मार दे कई मर गए, होमे कहिंदी है जी, कहिंदी मैनू मार दे कई मर गए पर मैं ना विचों मरदी, कहिंदी मैं नहीं खत्म होंदी, एक पास्यों बार उतारो मैं दूजे पास्यों वड़दी, एक पासे एक पौड़ियों हेठ उतारो मैं दूजी पौड़ी चढ़दी, काली दासा मैं मोया बगैर खबर ना सच्चे कर दी। वो कवि कहिंदा भी जिन्ना चर होमे खत्म नहीं होंदे उन्ना चर सच्चे कर दी खबर नहीं हो सकती। और वाहिगुरु गुरमंत्र ऐसा जाप है जिदे जपन करके होमे खत्म हो जाती है। नाम

सज्जन ठग अपने बंदियां नू लैके हुण अपने असली रूप विच आके हत्थां विच नंगे हथियार फड़े होए आ ते गुरदेव पातशाह दे कमरे दे विच आ वड़दा है। और इन्हां वल देख के भाई मरदाना जी सच्चे सतगुरां दे ओले होण दा यतन करदा है भी इह पापी सच्ची पाप करन ते उतर आया इत्थे हुण घट नहीं गुजरेगी पर अपने प्रीतम ते भरोसा भी बड़ा है मेरा दीन दुनी दा मालक रखिया आप करेगा यह गुरु प्यारे भरोसा से गुरुदेव पातशाह उत्ते किते भाई मरदाने वर्गा भरोसा साडा भी बच जाए। हुण ये सज्जन ठग अपने असली रूप में आके आकण लगा कहिंदा बाबा असी तेनू सचो सच दस दईए असी कोई सेवा सुवादार नहीं कहिंदे तू सोचते होवोगे तुसी सोचते होवोगे भी इत्थे एक मस्जिद बनाईया दोहरा बनाया भी शायद असी लोकां नू बहुत असी सेवा करते हैं असी सेवा नहीं असी लुटिया करते हैं तेनू साफ शब्दां च कहिंदे दस दिंदे आ असी लुटिया करते असी लुटेरे हां असी कतल कर दिंदे आ और सानू ये भी पता कि तुसी भी कोई साधु नहीं गे तुसी भी सदागर हो तो अमीर हो किसी अमीर बाप की औलाद हो तुहाडे कोल बहुत सारा सरमाया ये सानू पता है और तुसी अपने आप सामने कढ के रख देवोगे ते के असी तुसी तुहानू कतल करिए ते फिर बाद विच कढोगे। हुण सच्चे सतगुर इदां वल देख के मुस्कुरा पए भाई मरदाना जी डरे पए आ पर गुरदेव पातशाह दे चेहरे दा नूर पहला वांगू भी लट लट करके बलना पिया ते सच्चे सतगुरां दे चेहरे दे उत्ते मुस्कुराहट आई है। हुण गुरु प्यारिओ इन्हां ठग्गां ने कई कतल कीते बहुत बंदे मारे पर जिहनू डरावा दिंदे सी सामने हथियार हुंदे सी ना ते सामने वाला विलकदा हुंदा सी भी साडे कोल जो हैगा लै लो पर कतल ना करियो पर गुरदेव पातशाह उल्टा मुस्कुरा रहे ने इह पहली वार इन्हां ने ठग्गां ने देखिया भी इदां दा भी कोई इंसान हुंदा मौत दा डर असी दे रहे सामने मौत खड़ी है ते उह मुस्कुरा रहे आ। हुण इस गल ने ठग्गां दे दिल दे उत्ते थोड़ा जिहा असर कीता ते सच्चे सतगुरु बड़े प्यार दे नाल बोलदे कहिंदे सज्जणा तू सानू लुटना चाहुंदा है ना तेनू साफ शब्द दस दईए भी साडे कोल कोई पैसा है नहीं कोई माल धन जो तू समझदा असी ओ नहीं आ साडे कोल कोई जायदाद कोई पैसा धेला है नहीं पर जो साडे कोल है ना जो साडे कोल हैगा वह तू लुट ही नहीं सकता वह नहीं तेरे को लुट होना साडे कोल नाम दा धन साडे पल्ले है साडे कोल परमेश्वर दा नाम है साडे पल्ले सच है तू दस ये लुट सकदा ते गल कर ते नाले सज्जणा तू जिन्हां दे वास्ते ये पाप कर रहा एडे को कर्म किते आ तेनू पता भी इहदा लेखा दरगाह दे विच देना पैना उत्थे सच्चे ही सच ने बड़े चुण वक कढे जजमालिया थाउ ना पाइन कुड़ियार मूह काले दोजक चालिया लिख नावे धर्म पाले तेनू एक एक पल का एक एक किते हुए कुकर्मा का तेनू हिसाब किताब देना पैना ते तेरे विचों किसे तेरी औरत ने किसे धी पुत ने तेरा साथ नहीं देना ते तेरे पापा का पलड़ा इन्ना ज्यादा भारी होना कि जदों पुन की गल करांगे ते तेरे दूसरे पलड़े दे विच एक भी पुन नहीं लिखिया होना ते सच्चे सतगुरु इत्थे हुण गुरु प्यारिओ इन्हां दे हथ कंब जांदे आ एकदम नीवियां पै जांदियां साडे दिलां दियां बुझियां गईयां और गुरु महाराज जी ने होर इन्हां दे दिलां नूं चोभां लाईयां टुंबिया भी सज्जनो ना एक कर्म ना करो ते हुण सच्चे सतगुरु जदों इह देख लैंदे आ गुरु महाराज देखदे आ भी हुण जिहड़ा लोहा पूरा गर्म हो चुका है हुण सच्चे सतगुरु शब्द की चोट मारदे ने भाई मरदाना जी नूं कहिंदे मरदानिया तू कातों डरदा फिरदा तू कातों लुकदा फिरदा उह डरन उह जिहड़े पापी आ पर धर्मी नहीं डरिया करते सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी वगसेत धर्मियां नूं डर दी लोड़ नहीं तू रबाब वजा आपां इन्हां दे नाल गल करदे आं आपां निरंकार दे नाल जुड़दे आं। भाई मरदाना जी ने सच्चे सतगुरां दा पा के हुक्म रबाब वजाई है ते सतगुरां दे अलाही कंठ दे विचों आवाज आई है सूही महला पहला उजल कहां चिलकणा घोटम कालड़ी मस
ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤ੍ਰਪਕ ਤ੍ਰਪਕ ਕਰਕੇ ਅੱਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਸੋ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ

एहन सुसहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह।

देग तेग बिरद की पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖੱਪ ਤੁੱਟਹਿ ਵੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਾਧ ਮਾਰ। ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖਹਿ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਪਾਤ ਸਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖ ਹੈ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਨ, ਆਖ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆਖ ਹੈ ਇੰਦ, ਆਖ ਹੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਖ ਹੈ ਈਸਰ ਆਖ ਹੈ ਸਿੱਧ, ਆਖ ਹੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖ ਹੈ ਦਾਨਵ ਆਖ ਹੈ ਦੇਵ, ਆਖ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖ ਹੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹੇ, ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ। ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਣ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਣ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਾਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ, ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਹਿ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ, ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾ ਤੇ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਯੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੁਇਕਾਰ, ਚਲਾਵਹਿ ਲਿਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ,
एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीबान। जेव तिस भावै तिवै चलावै, जेव होवै फुरमान। ओह वेखै उन्हां नदर न आवै, बहुता एहो विडान। आदेश तिसै आदेश, आदि अनिल अनादि अनाहते, जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आदि अनिल अनादि अनाहते, जुग जुग एको वेस। एक दूजी बाव लख होहे, लख होवह लख वीस। लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीस। ए तो राहे पत पवड़िया, चढ़िया होए इक्कीस। सुन गला आकाश की, कीटा आई रीस। नानक नदरी पाईए, कूड़ी कूड़ै ठीस। आखन जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर। जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राज माल मन सोर। जोर ना सुरते ज्ञान विचार, जोर ना जुगते छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राति रुते थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निसान। कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड का। खोह कर्म केते पवन पानी वै संतर। केते कान महेश, केते बरमे घाड़त। घड़िया है रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर। केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर। केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ। केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन। केते केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी। केते पात नरेंद, केतिया सुरते सेवक। केते नानक अंत ना अंत ज्ञान, खंड बह ज्ञान प्रचंड। तिथै नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप। तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ता किया गला कथिया ना जाहे। जे को कहै पिछै पछुताए, तिथै घड़िया सुरत मातमान बुद्ध। तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहिया भारपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ता के रूप ना कथने जाहे। ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लोह, करहै आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत ना अंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जात पाहारा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार। पाओ खला अगन तप ताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल। घड़िया शब्द सचे टकसाल, जिन काओ नदर कर्म तिन कार। नानक नदरी नदर निहाल सलोक, पवन गुरु पाणी पिता माता। धरत महत दिवस रात, दुए दाई दाया। खेलै सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया। वाचै धर्म हदूर, करमी आपो आपनी। के नेड़ै के दूर, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਿ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਨ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋਸਤ ਅਬੰਧੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਧੇ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਬਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਧੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਜੰਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ
अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौने, नमो सर्व पौने, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो निरत निरते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते, कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र माने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपुगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं स्नानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंतर जंतरं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता, अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता, परम परम परमेश्वरं प्रोष पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्त तामं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं, अपेय हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अपेश हैं, पुजंग पर्यात छंद, अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमस्तवं निरनाथे, नमस्तवं परमाथे, नमस्तवं अगंजे, नमस्तवं अपंजे, नमस्तवं अकाले, नमस्तवं अपाले, नमो सर्व देशे, नमो सर्व पेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी, सदा सर्वदा रिद सिद्धं निवासी, चरपट छंद त्वय प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे अचल, राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले, रुवाल छंद त्वय प्रसाद, आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार, सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रे साल, नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नारेख, आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख, देश और ना पेश जाकर रूप रेख नाराग, जतर ततर दिशा विसा होए फैलियो अनुराग, नाम काम बेहीन पेखत ताम हूं नह जाहे, सर्वमान सर्वतर मान सदैव मान तताहे,
एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान हे जिह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चत्तर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अभेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकत दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग आर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही वह चित मद भार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अभंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भार नाड अन डंड बाड चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर माने आए चत्तर चक्कर दाने आए चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना भरमंग ना पितरै न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्तरै न मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अधिसै अदृश्य अकृसै भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के बेभूत करनै के राजं प्रभाहै के धर्मं तुजाहै के आ शोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति हैं के छत्रं छत्री हैं के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रं बिहीनै के एकै अधीनै के रोजी रिजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वं कली हैं के सर्वं दली हैं के सर्वतर माने आए के सर्वतर दाने आए के सर्वतर गौनै के सर्वतर पौनै के सर्वतर देसै के सर्वतर भेसै के सर्वतर राजै के सर्वतर साजै के सर्वतर दीनै के सर्वतर लीनै
के सर्वतर जा हो के सर्वतर पा हो के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर कालाय के सर्वतर पालाय के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर सोखाय के सर्वतर सोखाय के सर्वतर पोखाय के सर्वतर तराणाय के सर्वतर प्राणाय के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर भान्याय के सर्वतर मान्याय के सर्वतर इंद्राय के सर्वतर चंद्राय के सर्वं कलिमै के परमं फहिमै के आकल अलामै के साहिब कलामै के हुसनुल वजूह हैं तमामुल रुजू हैं हमेशुल सलामै सलीखत मुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तो पराज हैं सदा सर्व साज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं उवं आद रूपे अनाद स्वरूपै अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुबं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागै त्रिपुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं किनरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विपुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विपुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अभगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पोत्राय ना पुत्राय ना सत्राय ना मित्राय ना ताताय ना माताय ना जाताय ना पाताय निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकान हैं हिरासुल फिकान हैं कलंकं परनास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं
रजायक रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं परनास हैं, बेहस्तुल निवास हैं के सरबुल गवन हैं, हमेशुल रवान हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परं परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेशुल अलेख हैं, हमेशुल अपेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं के जुर्रत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो बेभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग हैं, के अमितो अभंग हैं, मद भार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनचिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एक सदाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुर बर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंज गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद।

करुणाकार हैं, अजपा जाप हैं, अथपा थाप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, तरणी तृत हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता मृत हैं, नर नायक हैं, खल कायक हैं, विश्वंग पर हैं, करुणालय हैं, नृप नायक हैं, सर्व पायक हैं, भव भंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिप तापन हैं, जाप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कार हैं, हरता हार हैं, परमात्म हैं, सर्व आत्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, पुजंग पर्यात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग बेपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश, अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी, ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेख अगंजे अलेखे, पुजंग पर्यात छंद, नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं परणासे सुतर्मं बेपूते, सदा सचदानंद सतरंग परणासे, करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजायब बेपूते गजायब गनीमे, हरियं करियं करीमुल रहीमे, चतर चक्कर वर्ती चतर चक्कर भुगते, स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते, स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं परनासि दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं बेपूते, दुकालं परनासि दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं बेपूते, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवी त्वै प्रसाद, सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के, देख फिरियो घर जोग जति के, सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, कोऊ न देखियत प्राण पति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रति बिन एक रति के, माते मतांग जरे जर सांग, अनूप उतांग सुरांग, सुवारे कोट तुरंग कुरंग से, कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे, भारी पुजान के भूप भली बिद, नियावत शीस न जात बिचारे, एते भय तो कहा भय भूपत, अंत काओ नांगे ही पाए पधारे, जीत फिरै सब देश दिसान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे, भूत भविख भवान के भूपत, कौन गणे नहीं जात बिचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत काओ, अंत के धाम सिधारे, तीरथ नान दया दाम दान, सो संजम नेम अनेक बिसेख है, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेख है, पौन आहार जति जत धार, सबै सो विचार हजार क देखै, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक न लेखै, सुध सिपाह दुरंत दुबाह, सो साज सनाह दुरजान, दलेंगे भारी गुमान भरे मन मै,

कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोरम वासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद नि साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साच बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रास हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिये सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवी कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन कवाज संघरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो बार चाहाऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्तर हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास ने वरिया हुजो सदा हमारे पछा श्री अस तुज जो करिया हो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरे चतुर दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी सेव कियो बेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी
ਸਿਵ ਕਣ ਕੋ ਸਾਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਾਲਮੋ ਵਧ ਕੀਓ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸ ਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਾਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ਤਾ ਕਉ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਹੇ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹੇ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇ ਤਜਕੀਨੀ ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੁਵੈ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਯੋ ਸੰਕਰ ਏਕੈਠਾ ਸਿਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰ ਭਾਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੋਯੰ ਭਾਵ ਅਬਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖਿਅ ਉਬਾਰ ਅਸਿੱਖਿਅ ਸੰਘਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਾਨ ਘਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਧੁਜ ਤਵ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਿਤ ਹੁਵੈ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਆ ਹੈ ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਐ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਾਰਿਹੋ ਤਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਿਹੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਛਾਹ ਛੁਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਾਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀਅਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਯਾਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਦੁਖ ਨਾ ਤਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜਿਲ ਸੁਨੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਯਾਹੇ ਸੋ ਰਸਨਾ ਪਾਵਈ ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਾਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹਿ ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚਾਉ ਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ਚਾਉ ਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰਹਿ ਸਹਸ ਪਨਿਜੈ ਅਰਧ ਸਹਸ ਫੁਨ ਤੀਨ ਕਹਿਜੈ ਭਾਦਰਵ ਸੁਧੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵੇ ਵਾਰਾ ਤੀਰਸ ਤੁਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਸੁਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਉ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਉ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ
सिमरित शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहै हम एक ना जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हे बखानियो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड कै गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार कौ छाड कै गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओवंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया। सबदो ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो। तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार। ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरा। घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया। कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे वाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमानी। देह निमानी लिवै बाज हो क्या करे बेचारिया। तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया। एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बाज हो क्या करे बेचारिया।

0: श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै ताए सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: पंजा प्यारियां चौफा साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन देठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निभाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतहै बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल।

रतना रतन पदार्थ बहु सागर परया राम बाणी गुर बाणी लागे तिन हाथ चढ़या राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़या निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे भंडारा समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई

अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा गोरपुरा पेटियो वड भागी मन है भया परगासा

सत्संग जी अंतर्गत होके दो तीन मिनट वास्ते अपने नाम ने सुनना करना जियो। उस तो उपरंत फिर अपना रसना नाल जपांगे जियो।

पौड़ी बिन सतगुर के नै ना पायो, बिन सतगुर के नै ना पाया। सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगट आग सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एह विचार है जिन

0: ध्यान दियो जी, रब नाल प्रेम, दूजा वचन दुष्टां दा त्याग, तीजा वचन मन तो भरम दूर, चौथा वचन शब्द दा पुजारी, पंजवां वचन पापां दा त्याग, छेवां वचन श्रेष्ठ मत, सतवां वचन गुरु दी टहल, अठवां वचन वाहिगुरु जी दे नाल मन तो अंदरों प्रीत, नौवां वचन गुरु दे चरण अपने हिरदे विच वसा लवे। तां महाराज कहिंदे दसवीं विच, नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावे। आ दस बचन आए ने, नौ जने कमाले, फिर वह गुरु दे विच समा जांदा है। सुर सती जमना गोदावरी, गया प्राग सेत को रखेत, मान सार है कांसी काती, द्वारा मती माया मथुरा, जुद्या गोमती अवंत का केदार, हिमतार है नर्मदा बिबद बन देव थल कवलास, नील मंदर चल सुमेर गिरवर है, तीर्थ अर्थ सत संतोख दया धर्म, श्री गुर चरण राज तुल ना सागर है। कबित जे भाई साहब जी दा कहिंदे सारे ही तीर्थ सत्कार योग ने, पर गुरु दे चरण धूड़ी दे सदर्श नहीं है। ते जे निर्गुण स्वरूप करके जानो ते फिर गुरु दे चरण कोई हड मास दे नहीं है, वह ते केवल चित चरण नाम है। ते प्रतख चरण ने गुरु दे सरगुण स्वरूप करके गुरु सवारी संगत जी आप जिया ने बहुत ही प्यार विच हाजरियां भरिया ने। दास तकरीबन चार वीकां तो दो तीन दिन उत्ते, चार वीकां तो दो दिन गां गुरद्वारा दशमेश कल्चर साहब विखे हाजरी भरी है। मैं अगे ग्रंथी सिंह साहबान जी नूं बेनती कर रहा सी, ध्यान दिओ, कई बार मेरे वर्गा मूर्ख यह गल कहिंदा भी मैं सही हाँ, पर संगत विच ऊणताइयां मेरे वर्गी दीआं बेअंत हुंदीआं ने, बेअंत ने। हथ जोड़ के पल्लू पा के तुहाथों एक मंग मंगदा, तुसीं मैनूं आस रखदा कि मेरी वह मंग पूरी हाँ जी जरूर करोगे। हिरदे चो मंग मंग रहा, तुसाने माया नाल बड़ा निवाजिया, मैनूं जीओ नाल बड़ा निवाजिया, पर जिहड़ी मैं अज मंग रहा झोली अड के खैर, वह यह खैर मंगदा सारी संगत गरीब की अरदास कर दिओ, जिन्ना चिर कथा करे ते जीवन विच रह के नाम बाणी दे जाप विच पातशाह तुहाडी कथा करे। अगर जे नाम बाणी विसर जावे ते कथा ना करे। ये मैं तुहाथों मंग मंग रहा ते तुहाडी अरदास जिहड़ी है ना वो खाली नहीं जाएगी। तुसी माया नाल ते नवाजिया, माया ते आउणी है ते माया चली भी जानी है। इहो धन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए। मेरी झोली विच नाम ते गुरसिखी पा दिओ, पाओगे जी। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, तुहाडे हथ जुड़ गए ने, मेरा जीवन सफल हो जाए। मैं ते अगे बेनती कर रहा सी, विचार करद्या करद्या परसों ही मैं गल कही, इन्हां बाबा जी कोल एक वीर आके बह जांदा शाम सवेरे मत्था टेकदा, इत्थे बैठा हुंदा आसा की वरदा, उन्हें कन्ना च मुंदियां जिहियां पाईआं हुंदियां। मेरा कई दिन ना उहनूं बुलाउण नूं चित करदा रहा, इन्हां तुहाडे कोल आके बहिंदा जी, उह मेरा चित करे मैं उहनूं बुलावां, पर मैं कहा पता नहीं किदां बोलेगा। तेरे चार दिन की गल है, मैं एक दिन अगे भी दस्सिया सी, मैं अंदर आ रहा ते उह बाहर जा रहा, इह गुरु पता नहीं किहदे विच आके ते कित्थे आके किवें वरत जांदा जे। वह मैनू कहिंदा मिलना, मैं कहा मिलना, मैं भी तैनू चाहुंदा सी, मैं कित्थों दस्सेंगा, कहिंदा जी चमकौर साहब जी का। मैं कहा वाह भई वाह, मैं कहा फिर कन्नां विच मुंदियां चंगियां नहीं लगदियां। कई बार साढ़े घरां विच भावें साडा बच्चे नहीं कहना मनदे, पर गुरु की कला पता नहीं कित्थे आके किवें वरत जांदी है। भावें मेरा खुद बच्चा ना कहना मनदा होवे, नहीं मनदा, संगत विच दसो तां बात होर बन जांदी है, संगत की अरदास प्रवान हो जांदी है, पर बार विच कित्थे गुरु कृपा करदा है। कहन लगा मैं कहा भी ये चंगियां नहीं लगदियां, कहिंदा ला दिंदा, कहिंदा की करनी आ, मैं कहा गोलक च पा दे, इत्थे आया कहिंदा तुसी, मैं कहा ना
1: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਰ ਵੀਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਚਾਰ ਵੀਕਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਫਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੋਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਰਹਿਣ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀਆਂ, ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ। ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ

0: इतनी हाजरी प्रवान करनी जी सतगुरां दी बाणी गायन करदिआं अनेक तरह दीआं भुल्लां होईआं होणगीआं। आप संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्शण योग असीस बख्श करना जी सतगुरां दी बाणी शुद्ध अस्पष्ट अगे वास्ते महाराज पढ़न दे बल बख्श करन। आओ हुण अगला समा जो ज्ञानी जी आप जी ने सांझ पा रहे ने सरवण करके गुरु दरबार की हाजिरी भर के लाए प्राप्त करो जी। फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन काओ सदा नमस्कार। अज का जो दिहाड़ा है धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी जो रमदास की धरती से अज के दिन प्रापुर प्याला कर गए सन उन्होंने अज इस दिहाड़े मुख रखद्या होते दीवान सजे हैं अमृत बाणी का कीर्तन आप संगतान सरवण करा रहे सन भाई गुरदयाल सिंह जी श्री खडूर साहब वाल रागी जत्था जिन्हों का अज इस अस्थान से लास्ट दीवान है। सो सच्चे पातशाह चढ़दियां कलां करन इस तरह ही गुरु पंथ की सेवा कीर्तन दे राही करते रहन। हुण समा कथा का है ज्ञानी भाई गुरमेल सिंह टोरंटो वाले इन्हों का भी पूरा महीना हो गया इस अस्थान से आप संगतान कथा सरवण करांदियां। अज शाम का इन्हों का लास्ट दीवान है इन्होंने शाम को वापस चल जाना टोरंटो। सो तिन्हों का भी संगतान वालों बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे पातशाह चढ़दियां कलां बख्शन इस तरह ही गुरु की संगतान गुरबाणी की कथा नाल जोड़ते रहन। आओ बड़े प्यार दे नाल कथा सरवण करिए भाई गुरदास जी दे कबित सवैया विचों। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: वाहिगुरु बोलो भाई वाहिगुरु वाहिगुरु।

गुरु सवारी संगत जी बहुत प्यार विच जुड़ बैठे हो। आओ सारी संगत माई भाई गुरसिख प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का। तुसी समझ गए हो, कहण दी लोड़ नहीं पैनी, आस रखदा हाँ। आखो वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे पंडौर सब ते ऊच जा का दरबार सदा सदा ताको जोहार देंदे तोट नहीं पंडार खिन में थाप उथापन हार जाका हुक्म ना मिटे कोए सिर पातशाह साचा सोए जिसकी ओट तिस की आसा दुख सुख हमरा तिस ही पासा राख लीनो सब जन का पड़दा नानक ताकि ओस्तत करदा। गरीब निवाज दसां पातशाहियां दी जगदी जोत समर्थ गुरु आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु जी दी

0: से विरले थोड़े जो मन चित एक अराद दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े। वाहो वाहो गुरसिख नित सब करहो गुर पूरे वाहो वाहो पावे नानक। वाहो वाहो जो मन चित करे तिन जम कौंकर नेड़ना आवे। वड्डियां भगां वाले हो बहुत ही प्यार विच समूह संगतां ने दूरों नेड़ियों चल के सतगुरु जी आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां भरियां ने। सतगुरु जी रहमतां करन पाई सब दियां हाजरियां प्रवान हो जान। लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आप है मेले। आओ अगले दीवान गुरमुखा पासों बहुत ही प्यार विच सरवण करोगे। दास नाल पाओ फतेह दी सांझ तां गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी टोरंटो वाले जो कि आप जी गुरमत विचारों श्रवण करवा रहे सन संगत वालों। ज्ञानी जी होर का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण बेनती करदे हां बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी भाई साहब भाई बलबीर सिंह जी बिहारीपुर वालों के ढाडी जत्थे नूं कि वह आप जी गुरत्यास से बारह श्रवण करवाउण जी। आप जी गुरत्यास से बारह श्रवण करो जी ते गुरु साहब जी दीआं खुशियां प्राप्त करो जी। सात सिंह जी आप जी के चरणों च बेनती है कि समूह दौधर पिंड दीआं संगतां ते कैलगिर दीआं संगतां वालों संत बाबा उजागर सिंह जी की मिठी याद मनाते हुए ते सलाना बरसी के संबंध में श्री खंडपाल साहब जी जो कि 2 अक्तूबर दिन शुक्रवार सवेर में आरंभ होंगे तिना के भोग 4 अक्तूबर दिन ऐतवार सवेरे 9 बजे पैणगे उपरंत दीवान सजणगे जी। आप जी ने दीवाना की हाजरी भर के गुरु साहब जी खुशियां प्राप्त करनिया जी। तो जनरल बॉडी की मीटिंग जो कि 18 अक्तूबर दिन ऐतवार 2 बजे होगी जी। आप जी ने वो भी जरूर शमूलीयत करनी जी। आहो सारे जाने गुर इतिहास के बारे में जुड़िए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

0: दूध भी देवे नाले मिठे मेवे।
1: जै सखनी दे बंश ना कोई कीनू कैस देवे।
0: पुत भी देवे दूध भी देवे नाले मिठे मेवे।
1: जै सखनी दे बंश ना कोई कीनू कैस देवे।
0: बच्चियां तो बिन झड़ना कोई, बच्चियां तो बिन झड़ना कोई।

मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर पाई पूर्व जन्म के मिले संयोगी ही अंतहे को ना सहाई मुकत माल कनक लाल हीरा मन रंजन की माया हा हा करत बिहानी अवदह तामह संतोख ना पाया हस्त रथ असव पवन तेज धनी भूमन चतुरंगा संग ना चाल्यो इन मह कछुआ ऊठ सिधायो नांगा हर के संत प्रै प्रीतम प्रभ के ताकै हर हर गाइया नानक इहां सुख आगै मुख उजल संग संतन कै पाइया हर के संत प्रै प्रीतम प्रभ के ताकै हर हर गाइया नानक इहां सुख आगै मुख उजल संग संतन कह पाइया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवी जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवी जे लाए रहा लिवतार ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲਾਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾਂ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭੁਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਇ

थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो।